एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगलध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12

0: लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उनके प्रसारण समय के बारे में। कार्यक्रम विवरण में

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण। अभी 6:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। हमारा आज का विषय रहेगा अतिथियों का स्वागत करना बेहद जरूरी है। 6:15 पर श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार होगा 6:45 पर। श्री रामचरित मानस कान आप सुनेंगे 7:20 पर। उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 403। कार्यक्रम नमस्कार शुरू।

आप सुनेंगे 7:30 पर। 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होंगे। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम होगा 8:30 पर।

9 बजे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 पर आप सुनेंगे देशगान। लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी आप सुनेंगे 9:15 पर। 9:30 पर फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दिल से दिल तक। हमारे जयपुर केंद्र से रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलो वाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे 9:55 पर। 11 बजे पुनः आप सुनेंगे हमारे शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 12 बजे। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार रहेंगे तुलसीराम भगत और साथी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे 1:00। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। 2 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज होगी। तत्पश्चात 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा तराने नहीं पुराने। शाम 4 बजे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुनेंगे 6:10 पर। संस्कृत में समाचार होंगे 6:20 पर। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। तत्पश्चात कार्यक्रम जिले की चिट्ठी होगा 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों के लिए समय होगा 6:45 का। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 7:30 पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से कंट्री वर्ड आप सुनेंगे 9:30 पर। हमारे जयपुर केंद्र से विज्ञान पत्रिका होगी रात्रि 10 बजे। 10:30 पर गजलें आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार श्रोताओं, आज आप चिंतन सुन रहे हैं रेडियो साथी अंकिता के साथ। हमारा आज का विषय है अतिथि का सत्कार अवश्य करें। श्रोताओं, हमारे घर में जब भी कोई मेहमान अतिथि आते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि उनके आने से हमारी डेली की जो दिनचर्या है, हमारा रोजाना का जो कार्यक्रम है, उसमें क्या बदलाव होगा। और बदलाव तो होता ही है, जब कोई घर पे आता है तो बदलाव होना तो तय है। हमारे खाने पीने का समय बदल जाता है, सोने का समय बदल जाता है, स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, इस कमरे से उस कमरे में या अन्य किसी स्थान पर। ऐसी स्थिति में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इस सारे डिस्टर्बेंस में हम कहीं ये ना भूल जाएं कि जो अतिथि हमारे घर आए हैं वो हमारे घर इसलिए आए हैं क्योंकि उनके साथ हमारा बहुत स्नेह है और उनके साथ हमारा कुछ ऐसा रिश्ता है जो शायद मित्रता का हो सकता है, घरेलू परिवार का हो सकता है, या अन्य किसी बात के कारण हो सकता है, उनको किसी बात की ज़रूरत हो, या जब वो आए हैं तो उनका कोई काम हो। तो उनकी इस विशेषता का ध्यान रखते हुए हमें अपनी जो परेशानियां हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए, उनके सामने प्रदर्शित ना करते हुए उनका मैनेजमेंट करना चाहिए। उनका स्वागत जब हम करें तो उस स्वागत में किसी प्रकार का हमारी परेशानी को हम उसको शो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का संदेश सदियों से दिया जा रहा है। घर आए मेहमान का सत्कार न केवल एक सामाजिक कर्तव्य है बल्कि इसे सबसे बड़ा पुण्य और धर्म भी माना गया है। हम जब भी मेहमानों का स्वागत करें तो घर पहुंचने पर मुस्कुराते हुए उनका अभिनंदन करें। अभिनंदन में हम उनको नमस्ते कहें, प्रणाम कहें, या कैसे भी हम उनको जिस प्रकार संबोधित कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें उनके बैठने के उचित स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। हो सकता है वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं ना हो, लेकिन उनके लिए हमें अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। भोजन का अच्छा प्रबंध करना चाहिए जिससे जब वो आएं तो उनके लिए अच्छा भोजन परोसा जा सके। सबसे पहले उनके आते ही उनका सत्कार करते ही, उनको बैठते ही पानी हमें ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बाहर से आता है तो प्यास लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम उन्हें पानी देते हैं तो वहीं उनकी आत्मिक संतुष्टि जो है वहीं से शुरू हो जाती है। उनको चाय या अन्य किसी जूस के लिए हमें जरूर पूछना चाहिए। लिक्विड जैसे ही उनके अंदर जाएगा वैसे ही उनको महसूस होगा कि उनकी थकान दूर हो रही है और जहां वे आए हैं वहां उनका सत्कार अवश्य किया जा रहा है। उनको आंतरिक तौर पर खुशी होगी। उनके साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें और उन्हें अपनेपन का एहसास कराएं, क्योंकि जब भी हम किसी के घर जाते हैं या कोई हमारे घर आता है तो हम अतिथि बनकर चाहे हम खुद जाएं या फिर हम खुद हमारे खुद के घर पे कोई आए, तब हम अक्सर यही देखते हैं कि हम थोड़ा सा महसूस करते हैं कि स्थान हमारा नहीं है, हम यहाँ थोड़ा सा परेशानी में रहते हैं। लेकिन ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम लगे हमारे अतिथि को। ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें सत्कार ना मिलने की वजह से हम थोड़ा दुखी होते हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हमें अच्छा नहीं लगा तो हमारे घर में आने वालों को कैसे अच्छा लगेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हमारे घर आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से हम उनकी आत्मिक संतुष्टि के साथ साथ स्वयं की आत्मिक संतुष्टि को भी प्राप्त करेंगे। तो श्रोताओं, ये था चिंतन।

श्रोता भी सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का शुरू केंद्र है। समय 6:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे वंदना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

सभी श्रोताओं का स्वागत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार में। गीत बहार की पहली प्रस्तुति आप सुन रहे हैं आराधना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

किशोर कुमार के ही आवाज में अभी आपने सुना जूली फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में भीगी पलकें फिल्म का गीत।

0: प्रस्तुति अभी आपने सुनी जीवन मृत्यु फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत अब श्रोता सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: कैसा कैसा

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। समय 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान उत्तराखंड से संकलित एपिसोड संख्या आज आप सुनेंगे 403। कलाकार है अनुराधा पोटवाल, संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 403।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरितमानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चुरू।

सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार शुरू में। आज के कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो साथी अंकिता कार्यक्रम में आपके साथ बनी रहूंगी, खूब सारी बातें, विशेष जानकारी और चर्चाओं के साथ, मीठे मीठे गीतों के साथ। आप भी कार्यक्रम में बने रहें। सभी साथियों को अंकिता का नमस्कार।

प्यारे से गीत की बात श्रोताओं, आइए बात करते हैं आज के खास दिन की। आज 11 जून है। आज विशेष अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले यानी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित ये दिवस इस बात का सशक्त स्मरण दिलाता है कि खेल केवल एक विलासिता नहीं बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इसका उद्देश्य बचपन के विकास के लिए खेल की रक्षा, प्रोत्साहन और उसे प्राथमिकता देना है। खेल बच्चों की मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये उन्हें रिश्ते बनाने, समस्याओं को हल करने और लचीलापन विकसित करने में मदद करता है। साथ ही साथ सामूहिक रूप से जो खेल खेले जाते हैं उनसे सामाजिकता बढ़ती है। बच्चे के अंदर एक ऐसी भावना विकसित होती है जिसमें वो टीम वर्क करना सीखता है। ये बच्चों के विपरीत परिस्थितियों में भी सुरक्षित, पोषित और प्यार महसूस करने का अवसर प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ सरकारों और समुदायों से सुरक्षित समावेशी खेल के मैदान उपलब्ध कराने और खेल के माध्यम से सीखने की पहलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया जाता है। बच्चों को स्क्रीन मुक्त, अनौपचारिक और साहसी बाहरी खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के खेलों में शामिल हो, शोध से पता चलता है कि देखभाल के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना बहुत जरूरी होता है। जो पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चे की बहुत देखभाल करते हैं और कहीं ना कहीं खेलने के लिए जो इंडोर गेम है और आउटडोर गेम है उनमें खेलना बहुत जरूरी है, उसके लिए चोट लगने के भय से या अन्य किसी कारण से उसे खेलने से रोकते हैं तो वो गलत है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के ही लिए खेल खेलना बेहद जरूरी है।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार चोरों में अब बात करते हैं हमारे सार्वजनिक स्थानों के बारे में। जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं, उनकी जो संपत्ति है, वहां रखी हुई जो चीजें हैं, उनका देखभाल, उनका रखरखाव हमारी भी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, सड़कें और स्मारक, इन सभी की देखभाल केवल सरकार का काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इन स्थानों को सुरक्षित, स्वच्छ और हरा भरा रखना समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या गंदगी फैलाना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। सरकारी संपत्तियों जैसे बस स्टॉप, बेंच और सार्वजनिक शौचालय आदि जो हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। पार्कों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को हम हरा भरा बना सकें, ऐसे प्रयास हमें करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों और बच्चों को सार्वजनिक संपत्ति के महत्व के बारे में बताना चाहिए। बच्चे हो सकता है इन चीजों को नहीं समझते, इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हम इस बात को कभी ना भूलें कि बच्चे समझाने के बाद उस काम को कभी नहीं करते हैं। अच्छे से अगर उनको समझा दिया जाए तो बड़ों के मुकाबले बच्चे ज्यादा उसका पालन कर सकते हैं। हम अगर एक जागरूक नागरिक बने और हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करेंगे तो ये हम ना भूलें कि ये हमारे लिए ही है, इनका उपयोग हम ही कर रहे हैं। अगर हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको दोबारा बनाने में, उनका रखरखाव करने में समय लग सकता है और वो असुविधा हमें ही होगी। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, सभी के लिए इन चीजों की जो रखरखाव है, इनकी जो सुरक्षा है, वो हमें करनी चाहिए और दूसरों को भी इसकी रखरखाव और सुरक्षा करने की सलाह और ज्ञान हमें प्रदान करना चाहिए।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, अंतराल के बाद कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने और स्थायी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख अभियान है ये। इसे 1 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पहले चरण की सफलताओं को आगे बढ़ाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और लक्ष्य, अगर हम बात करें इसके लक्ष्य के बारे में, तो सभी भारतीय शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। 100% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण, डोर टू डोर कलेक्शन, घर से कचरा उठाना और कचरे को अलग अलग करना सुनिश्चित किया गया है। शहरों में गंदे पानी का पुनः उपयोग और उचित प्रबंधन इसके अंतर्गत है। खुले में शौच, जो शहर ODF खुले में शौच मुक्त हो चुका है, उन्हें ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के स्तर पर अपडेट करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब बात करते हैं श्रोताओं, PM सूत्री कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन, इसके विषय में ये क्या है इसकी जानकारी आपको देते हैं। श्रोताओं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम एक प्रमुख सरकारी पहल है। इसके बिंदु संख्या 8 में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल का उन्नयन है इसका लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक दस्तकारों और युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान ITI खोले जाते हैं। तकनीकी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए मौजूदा ITI को अपग्रेड करना है। युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने के लिए नई मंजिल और करीब नवाज रोजगार योजना जैसी योजनाएं इसमें रखी गई हैं। तो अभी हमने बात की PM 15 सूत्री तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल का उन्नयन के बारे में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर श्रोता सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले

0: बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे है, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे

0: पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments

सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में। कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे गुलाम अली की गाई हुई गजलें।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन

0: सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटर शेड की स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनवाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम बीज योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया, जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
3: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर। आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देश गान।

श्रोता सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मरुवाणी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने फेसबुक कमेंट्स पर अदर फिल्म संगीत के कार्यक्रम दिल से दिल तक में। आपके द्वारा भेजे गए कमेंट हमें प्राप्त हो चुके हैं और कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके विचारों को सभी के साथ साझा करने वाले हैं मीठे मीठे और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो बने रहे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, अब समय है आपके कमेंटों का। देखते हैं कौन साथी हैं और अपने किन विचारों के साथ हमें हमारे फेसबुक कमेंट पे अपने विचारों को भेजा है। हम सबसे पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं विष्णु मिस्किन, रितिका, वाणी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, इन सभी ने दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से हमें कमेंट भेजा है। इनका कहना है, इंसान को जब तक जीवन मिला है उसे हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ जीना चाहिए। जीवन में सुख दुख, परेशानियां और चुनौतियां सभी के हिस्से में आती है, लेकिन मुश्किल से घबराकर हार मान लेना समाधान नहीं। हर कठिन समय पर हमें हर दिन एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। बड़े ही अच्छे विचार आपके। अगला कमेंट हम लेने जा रहे हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, चंडीगढ़ से। इन्होंने कहा है, जैसे जैसे हम उम्र की सीढ़ी चढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि ये दुनिया इमोशनल से नहीं प्रैक्टिकल आधार पर चलती है। यहाँ इमोशनल होकर फैसले नहीं किए जाते, ये जिंदगी व्यवहारिक और समायोजित होकर जीने के लिए ही होती है। भावों के साथ साथ हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें प्रैक्टिकली सोचना होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे तो हमें दुख ज्यादा होगा। कमेंट और है हमारे पास। अगला कमेंट है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा का। यदि आप सही हैं और फिर भी आप दूसरों पर आपका भरोसा नहीं है या दूसरों का आप पर भरोसा नहीं है तो सत्य और धैर्य के साथ बने रहें, क्योंकि समय सबका साथ नहीं देता लेकिन सत्य और अच्छे।
1: महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही साथ रेल मंत्री हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, वो आज इस ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और आप जैसा जानते हैं कि रेडियो के प्रसारण की गुणवत्ता एफएम ट्रांसमीटर से कितनी अच्छी सुनाई देती है, और यही है कि एक नया सोपान हम चढ़ने जा रहे हैं आकाशवाणी के इतिहास में। 90 साल के हमारा लंबा इतिहास रहा है जिसमें हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं से अपना जुड़ाव किया है।
2: और जितेंद्र, मैं तो ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ ही हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये सफर सूचना का है, संस्कृति का है और आप सबसे जुड़ाव का है। तो यूं ही जुड़े रहिए इस विशेष प्रसारण में। और साथ ही जितेंद्र, मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, टूट कर बिखरा नहीं हूं फिर से जुड़ने की प्यास में। मैं वो लम्हा नहीं जो गुजरा नहीं, मैं वो लम्हा नहीं हूँ जो गुजरा नहीं हूँ, मैं वो सपना हूँ जो टूटा नहीं हूँ।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलो वाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, और साथ ही इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति है प्रसून जोशी जी की, जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के। और ये जो ट्रांसमीटर है ये जैसलमेर जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके पास में स्थित है, तो इसकी वैसे ही महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
1: और जितेंद्र, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की खूबी, और एक खूबी है बिना खरखराहट के स्टीरियो साउंड में संगीत और बातें सीधे हमारे श्रोताओं के दिलों तक उतरेंगी।
0: बिल्कुल, और जो रेडियो प्रसार

0: के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
1: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया FM ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज और दूर तक और ज्यादा स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं तो कहना चाहूंगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं।

शुरुआत थोड़ी सी जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती।

धरती है, कला की भी धरती है। यहाँ तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है, आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के लीडर्स जुड़े हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली, ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसी हमारी दीदी, हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मज़ा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, मज़ा आता है। आप पधारे आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य कमजोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, भाई छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मज़ा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मज़ा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मज़ा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं, और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है। तो उस सीरीज़ में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा एक पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में यहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है, और जैसलमेर जिले का करीब

करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब यूपीए की सरकार थी, मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी यूपीए की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली, और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का भी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी। अभी जीएम साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। जीएम साहब 200 करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गाँव गाँव तक सड़क पहुँचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई, कैसा लगता है भाई पीछे? अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है। मैं उनको समझा रहा था, विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियां आएगी नहीं, जाएगी नहीं वहां से। कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते। अपने तो एक दिन भी गाड़ियां अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलूं, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का। सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए, और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे एमएलए साहब गोपाल जी भाई साहब
बता रहे थे।

0: और दीदी मंजू जी बता रहे थे स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं JDA से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी ना करके सबको साथ लेके, सबकी बात करके, सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज़ को करें। तो आप दोनों इसमें लीडरशिप लीजिए, और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी JDA को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही गांधीनगर स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है, जयपुर गांधीनगर। ये जयपुर गांधीनगर का मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन्स को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर। ये जैसलमेर का स्वर्ण नगरी का स्टेशन कंप्लीट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम। GM साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी GM साहब, हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट अधिकारी हैं। एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स है रेलवे के, 4-5 जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूँ उनमें से आप हैं। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की। ये अलवर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, सेकंड एंट्री तो बन ही गया है। बीकानेर, भुजिया की नगरी बीकानेर, भाई साहब
1: आपका।
0: कोटा का स्टेशन, कोटा को मॉडर्न बनाया है, जहाँ पे स्थापत्य कला, जहाँ पे मॉडर्न, जैसा जहाँ का स्वभाव, जहाँ की डिमांड, उसके हिसाब से सारा काम किया गया है। अजमेर, बहुत सारे स्टेशन हैं छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफी। ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशन्स का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है। करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद। फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर, महवा रोड, सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है, चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए। और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन हैं और काफ़ी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट। मारवाड़, मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सरादना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगीमगना, लानेला।

धनक्या, धनक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहां भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से, कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं। तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जनसाधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्शन वर्षों वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी। ये लंबे टाइम से गेज कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खटवास है जहाँ पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहाँ जाने के लिए, मुंद्रा, कांडला, इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी, अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियां कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियां, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही उसकी डिमांड की थी, अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए। क्या दीदी, दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दे? दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी। खिलाएंगे दीदी घेवर, पक्का मंगवा लिए? चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जीएम साहब, 15-20 दिन में कर पाएंगे, पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें, क्या शिवाजी 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, 1 महीने में। चलिए सभी 1 महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूँ मैं, 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए, जो दीदी की डिमांड है, ये आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ दो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में, एक तो अच्छा AI डेटा सेंटर बना रहे हैं। AI डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी AI पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक AI डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं, काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी ज़रूरत न पड़े, वो व्यवस्था भी यहाँ पर जयपुर में करेंगे। और यहाँ के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं, उसी कड़ी में कुछ और नई चीज़ें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताज़ा की, मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी
साथियों से

0: और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे, डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान का उदाहरण दें, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है, आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, वहाँ पे काम किसी भी तरह का, कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का, उसको एक मौका मिले, कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है, उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे। हाइपर लोकल, हाइपर लोकल, वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट लें, 1000 दिन का टारगेट लें, और 1000 दिनों में हाइपर लोकल, डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं, जिस तरीके से लोकल न्यूज़, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्जी की बात करें, ये चीज़ें समझाएं, राजस्थान के गट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीज़ें हैं अपनी संस्कृति की, और देश भर में, उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हाइपर लोकल, डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो जमीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सब के लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ, और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत।
3: और
2: दीजिए इजाजत,
3: इस प्रसारण से हमें इजाजत दीजिए। मैं राजकुमारी कर्णानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफर आप तय करेंगे हमारे साथी रौनक के साथ।

0: एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: देता हूं आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है। तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के में जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
2: जी,
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था। तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली। और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
2: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी को कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
2: जी जी।
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
2: जी, आप अगर सुनाए हमारे को तो 4 लाइन,
1: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
2: क्या बात है, वाह।
1: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
2: क्या बात है, वाह।
1: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
2: शेष कुशल है, क्या बात है।
1: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
2: वाह।
1: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
2: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
1: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह।
2: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साए में धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: में धूप
0: मशहूर
1: तो
0: रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
0: हाँ,
1: तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात है,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया।

0: इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी।
1: जी,
0: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि

0: लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
1: जी जी
0: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सब को पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या कहानी है?
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक थे,
0: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा। 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे, मैं उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है, तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी।
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी।
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पर लिखा।
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी, उनका आशीष था।
1: जी।
0: कि नाटक संयोग से, दुर्योग से, जैसे भी था, वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा।

0: काम
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में?
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: ये मराठी में भी
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया, साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा,
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वा।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह

0: शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
1: जी,
0: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
1: क्या बात
0: तुझे
1: है?
0: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
1: वाह वाह वाह।
0: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
1: जी जी।
0: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हॉन्ट करता है।
1: जी जी।
0: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हॉन्ट करता है या उससे पहले ही।
1: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन
0: बीता। क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
1: जी, क्या बात है।
0: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
1: क्या बात है।
0: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
1: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
0: पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
1: जी जी।
0: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
1: जी जी।
0: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
1: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
0: नहीं नहीं,
1: यहाँ सकारात्मक है।
0: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
1: जी।
0: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
1: कुछ करने
0: हम लगाने आए हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ सृजन करने आए हैं।
1: जी जी।
0: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती मेरे पास, चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
0: पहली बार देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गईं। तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना।
1: जी।
0: उसमें रविंद्र कालिया जी ने मुझे बुला के रखा,
1: इलाहाबाद के।
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ।
1: जी।
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा।
1: जी।
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा। फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे।

0: डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरेलल, तो एक इस ओहदे पर हैं कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
1: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं, ये आयोजक के उत्सव होते हैं
0: जी।
1: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
0: जी।
1: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
0: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप बहुत क्या करना चाहते हैं?
1: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है। आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है, लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्क स्टाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद करनी है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: कविता माने कविता नहीं रही
0: जी, जी।
1: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
0: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
1: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, तो आप वो जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
0: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।

0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देव भारती राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम रंग तरंग।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर बाद 11:05 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन पाएंगे दिन के 12:30 पर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तुलसीराम भगत और साथियों को। आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे दिन में 1 बजे। दिन में 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी दिल्ली से रिले मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दोपहर 2 बजे। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे दोपहर 2:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर।

हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। युवा साथी अपना कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5 बजे। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार होंगे शाम 6 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा शाम 6:05 का। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार आप सुन पाएंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप और हम चलेंगे आकाशवाणी जयपुर, जहां से पहले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। राजस्थानी में प्रादेशिक

समाचार होंगे शाम 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से ही होगा शाम 6:40 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8:45 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले चार संध्या का अंक आप सुनेंगे। News@9 का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से ही होगा रात्रि 9:00। राजस्थानी लोक संगीत एक बार फिर आप सुन पाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित कंट्री वाइड। आकाशवाणी जयपुर से विज्ञान पत्रिका का प्रसारण होगा रात्रि 10:00। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। सभा के अंत में हिंदी में समाचार होंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 11:00। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही होंगे 11:05 पर। कार्यक्रम विवरण में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में।

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है रानी मलिक ने और संगीत अनु मलिक का है।

0: चित्रपट संगीत में अभी आप सुन रहे थे चित्रा की आवाज को। फिल्म थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस गीत को लिखा था देव कोहली ने और संगीत अनु मलिक का था।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।

चित्रपट संगीत में अभी आपने सुना था मैंने प्यार क्यों किया फिल्म का गीत। आवाजें थी अलका याग्निक और कमाल खान की। इसमें गीतकार समीर थे और संगीतकार हिमेश रेशमिया। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों को अभी आप सुन रहे हैं ओम शांति ओम फिल्म में। इसमें गीतकार जावेद अख्तर है और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

0: अब्दरशाह जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का था।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
0: चित्रपट संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं यादें फिल्म का गीत। आवाजें हैं हरिहरन और साथियों की। इसमें गीतकार आनंद बख्शी है और संगीतकार अनु मलिक।

0: टशन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत में। आवाजें थी उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की। इसमें गीतकार कौशल मुनीर थे और संगीत विशाल शेखर का था।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र

सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

चित्रपट संगीत का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म थी क्रिश। इसमें नासिर फराज की शब्द रचना थी और संगीत राजेश रोशन का था। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं।

0: जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार। इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था। जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियां उनके लिए अनुकूल हैं।
0: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो राम कृपाल, बात यह है, कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
0: जी।
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
0: जी।
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है
0: जी। हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान

0: एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जैसे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तुलसीराम भगत और साथियों को।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई

0: विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तुलसीराम भगत और साथियों को अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर में। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। इस समय दिन का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर में हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
2: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाएं। जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें।
1: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

स्वागत है बहनों आपके अपने कार्यक्रम कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हाजिर हूँ मैं आपकी बहन कोमल राजपुरोहित। तो स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहनों, प्यारे से गीत के बाद जो है वो हम फिर से हमारे इस टॉपिक पे जुड़ते हैं कि चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम और टॉफियां। जी हाँ, ये सभी चीजें जो है इस गर्मी में के मौसम में हम सभी को इतनी अच्छी लगती है। और बहनों, अभी जो गर्मी का आलम चल रहा है, वैसे में तो हम देखें कि ये सारी चीजें अगर हमें बैठे बैठे घर पर जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि हम सभी का मन जो है यही करता है कि इस धूप में, इस चिलचिलाती हुई धूप में हम कहीं भी बाहर जो है वो ना जाएं और घर में बैठकर ही कुछ ऐसा ठंडा ठंडा जो है वो पेय पदार्थ, जूस, चॉकलेट्स जो है, आइसक्रीम है, ये हमें मिलते रहें और हम इसका अनुभव जो है वो अच्छा सा वो लेते रहें। तो जी हाँ बहनों, आज हम एक ऐसे ही जो है वो चीज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसको अगर हम पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं तो भी हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। इससे हमारे खून का विकास जो है वो भी अच्छा होता है। और अगर इसको इसको अगर हम फेस के जो है वो फेस पैक के रूप में अगर इस्तेमाल करते हैं, फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भी हमारी स्किन जो है वो काफी ग्लोइंग हो जाती है। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं बीटरूट के बारे में। बीटरूट जो है वो ऐसी चीज है जिसके अंदर आयरन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन में रिच जो है बीटरूट होता है, और स्किन केयर के लिए भी ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है वो होता है। तो बहनों, बीटरूट अगर हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, चेहरे को लगाने के लिए, तो ऐसी गर्मी में जो है ये हमें ताजगी का अनुभव कराता है। साथ ही साथ इसमें वो सभी तत्व हैं जो हमारी हेल्थ और हमारी स्किन दोनों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। तो बीटरूट को इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं, ग्लो का हेल्थ शॉट जो है वो हम बीटरूट को कह सकते हैं। जी हाँ, इंस्टेंट ग्लो अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हम बीटरूट को जो है वो हमारी डाइट का हिस्सा हमें बनाना होगा। बीटरूट की चाय, जूस और स्मूदी भी हम जो है वो बनाकर पी सकते हैं। पानी में अगर हम बीटरूट के टुकड़ों को उबाल कर मिंट या अदरक के साथ हम इसकी चाय जो है वो तैयार कर सकते हैं। जूस भी अगर हम इसका बनाना चाहते हैं तो गाजर, सेब और खीरे को इसमें मिला सकते हैं। ये सभी वही चीजें हैं जो गर्मी में हमें जो है ताजगी का अनुभव कराते हैं। साथ ही साथ पानी की कमी जो है अगर हमारे शरीर में हो गई है तो उसकी भी पूर्ति करते हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम इसका अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक जो है वो बना सकते हैं। स्मूदी दही, बेरीज और जो फ्लैक्सीड आते हैं उसको मिलाकर एक अच्छा सा जूस अगर हम तैयार करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम इसके स्किन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बीटरूट को घिस कर या छोटे से स्लाइस काट कर हम इसको मिक्सर में पीस कर इसका जूस तैयार करें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो जूस है वो पीने के लिए नहीं है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी नमक और मसाले जो है वो ना मिलाएं, क्योंकि अगर हम इन चीजों को मिला देते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग करने की बजाय खराब हो सकती है। तो इसमें नमक और मसाले बिल्कुल भी ना।

ना मिलाएं, जूस को पानी से डाइल्यूट भी कर सकती हैं, फिर आइस क्यूब ट्रे के अंदर जो है वो हम इसको रख दें और हफ्ते में 2 या 3 बार हम चेहरे को इसको इससे जो है वो वॉश कर सकती हैं, मसाज कर सकती हैं। लेकिन पहले जो है वो चेहरे को अच्छे से क्लीन करें, वॉश करें, उसके बाद ही जो है वो हफ्ते में 2 या 3 बार इसकी अच्छे से मसाज करें। इससे स्किन के जो पोर्स हैं वो टाइट होंगे, स्क्रीन ब्राइट होगी और हमारी जो पफिनेस है वो भी कम होगी। तो बीट रूट का जो जूस है उसको जमाने से पहले उसमें हाइड्रोजन के लिए एलोवेरा जूस या गुलाब जल भी जो है वो हम मिला सकते हैं। इसके फेस पैक की पावर भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो बीटरूट के स्लाइस सुखा कर पीस कर इसका पाउडर बना ले। तैयार किए हुए पाउडर से हम अलग अलग तरह के जो है वो पैक बना सकते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन के लिए जो भी पाउडर अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम मुल्तानी मिट्टी मिट्टी जो है वो मिलाकर, गुलाब जल मिलाकर लगा सकते हैं। ड्राई स्किन अगर हमारी है तो उसके लिए हम बीटरूट का जो पाउडर होता है उसमें दही और शहद मिला सकते हैं, और पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए पाउडर में एलोवेरा जेल और नींबू का रस, ये सभी मिलाकर इसका पैक बनाकर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा बहनों, बीटरूट जो है वो खाने पीने के लिए और चेहरे पर लगाने के लिए दोनों के लिए ही हमारे लिए जो है वो फायदेमंद होता है। और अगर हम इसको चेहरे पर लगाते हैं तो हमारे चेहरे का जो ग्लो है वो देखते ही बनता है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बहनों, इन दिनों छुट्टियां चल रही है बच्चों की, और ऐसे में हमारा जो काम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कई बहनों का काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि बच्चों को हमने शुरू से ही ये सिखा रखा है कि हमें जो है काम में मदद करनी है, किस तरह से अपनी चीजों को समय पर और जगह पर जो है वो समय पर काम को करना है और जगह पर चीजों को जो है वो रखना है। तो अगर हमने इस तरह से अपनी समय सीमा जो है बच्चों को सिखा रखी है, क्रमबद्धता सिखा रखी है, तो हम देखते हैं कि हमारा काम जो है व्यवस्थित ढंग से हो जाता है। लेकिन इसी की तुलना में अगर घर में सदस्य अधिक हैं और बच्चे छोटे हैं, तो ऐसे में हमारा काम जो है वो लगातार पूरे दिन चलता ही रहता है, और जब काम पूरे दिन चलता है तो हमारा शरीर जो है वो थकान का अनुभव करता है। ऐसे में हमें जो है पूरा दिन लग जाता है काम करने में, और ऐसी गर्मी के अंदर पूरे दिन जब हम काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है हमें थकान के साथ साथ कमजोरी और बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ ही महसूस होने लग जाती है। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है अपने काम को जो है वो शैलीबद्ध करने की। जी हाँ, अपने काम की प्राथमिकता जो है वो तय करना हमें आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि जितने भी काम हम करना चाहते हैं एक दिन में, उन सभी को हम जो है वो पूरा करें, और इसी को करने के चक्कर में हम देखते हैं कि हमारे काम जो है कुछ काम छूट जाते हैं, और ऐसे में हमें जो है वो तनाव सा अनुभव होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर कुछ काम पेंडिंग रह गया है तो उसे आप अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आपको अपने काम की प्राथमिकता जो है वो तय करना आना चाहिए। अपने काम की जो प्राथमिकता है वो तय करना उत्पादकता की कुंजी होता है। सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि

कार्यों को उनकी महत्वता और उनकी तत्कालीनता के आधार पर जो है वो क्रमबद्ध करना हमें आना चाहिए। जी हाँ बहनों, ये चीज अगर हम सीख जाते हैं कि कौन सा कार्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, किस कार्य को हमें सबसे पहले करना है, अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। किसी भी चीज के पहले होने का तथ्य, जो तथ्य है, स्थिति है, समय है, क्रम है, महत्वता है, उसकी प्राथमिकता जो है वो हमें आनी चाहिए, तभी हम काम को जो है वो आसानी से कर सकते हैं और हम कम समय में एक बेहतरीन परिणाम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें काम की प्राथमिकता जो है वो आ जाती है, कार्यों को उनकी तत्कालीनता, महत्व और कठिनाई के आधार पर हमें क्रमबद्ध जो है वो करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कई कार्य बहुत कठिन होते हैं और उनको करने में हमारा जो समय है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कठिन कार्य हम कर भी रहे हैं तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि या तो इसको हम अपने फ्री टाइम के अंदर करें, ताकि अगर हमारा दूसरा जो काम है वो जो है वो अस्त व्यस्त ना हो, या फिर अगर सुबह सुबह हमें और कोई काम नहीं हो तो जो सबसे कठिन कार्य हमारा हो सबसे पहले उसे ही निपटाना चाहिए, ताकि हमारा बाकी कामों के लिए जो है हमारे पास में समय हो। तो बहनों, इन काम को हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक जो है वो सूची बनानी तैयार करनी होनी चाहिए, ताकि उन सूची के अनुसार ही जो है हमारा काम एक बेहतरीन परिणाम के साथ जो है वो हमें प्राप्त हो। तो ये सूची हम किस तरह से तैयार करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

सूचीबद्ध करना चाहिए किस तरह से हम अपने काम को मैनेज करें प्राथमिकता के अनुसार, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें जो है वो क्या करना चाहिए। जी हाँ बहनों, सबसे पहले हम जो है

काम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उसकी समय सीमा भी हमारे पास में थोड़ी सी है और उसको हमने नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो उसके परिणाम जो है हम ये कह सकते हैं कि दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिनको हम चाह कर भी दोबारा नहीं कर पाते हैं। कहीं जाना है और अगर हमने इसकी पैकिंग टाइम से नहीं की, तो हम देखते हैं कि अगर जो सामान हमारा छूट गया, तो हमारे पास में पछतावे के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी समय सीमा जो है वो हमें अगर पता है कि बहुत ही करीबी है, तो उन्हें हमें तुरंत करना चाहिए। इसके बाद हमें योजना बनानी चाहिए। जी हाँ बहनों, जो काम महत्वपूर्ण है लेकिन तत्काल नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक निश्चित समय निर्धारित जो है वो होता है, तो उसके लिए हमें योजना बनानी चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात करी कि छुट्टियों की, बहुत सारी बहनें जो हैं वो अभी अपने पीहर आई भी हैं और उनकी समय सीमा जो है वो निश्चित है कि उन्हें वापस अपने घर जो है ससुराल जाना है। तो ऐसे में अपनी पैकिंग करना जो है वो भी एक काम ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी छूट सी जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि अरे इस बार तो हमने सोचा था कि ये काम मैं जरूर करके आऊंगी, ये चीज मैं जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन क्या हुआ, समय का जो है वो अभाव के कारण छूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जो है समय सीमा निर्धारित होती है, लेकिन अगर हमारी योजना जो है वो नहीं बनी हुई होती है, तो उसके कारण जो है वो विफल हो जाते हैं। तो वो काम हमें समय पर निर्धारित करके जो है वो पूर्ण कर लेने चाहिए। बहनों, एक बार कई बार एक चीज और है कि कई काम जो है वो हमें लगता है कि हमें ही करने हैं, वो काम इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर हम इनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अगर किसी और को सौंप देंगे तो ये काम क्या पता खराब हो जाए, क्या पता, तो काश या फिर क्या पता के चक्कर में बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो अधूरे से ही रह जाते हैं। तो अगर वो काम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम घर में किसी अन्य सदस्य को वो काम सौंप सकते हैं, ताकि वो समय पर जो है वो काम पूरे हों। और जिन कार्यों का कोई महत्व या लक्ष्य ही नहीं है, उनको एक बार के लिए आप सूची से हटा भी सकती हैं। जब हमें समय मिलता हो, जब हम फ्री टाइम में हो, तब उन काम को करें। इसके अलावा हमें टॉप 5 नियम जो है वो अपनाने चाहिए। हर दिन की शुरुआत में केवल 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को चुनें कि ये काम तो हमारे जो है आज के दिन में हमें अवश्य करने ही हैं, क्योंकि अगर हम उनको कल पर छोड़ते हैं तो क्या पता वो काम हमारे पूर्ण हो या ना हो। इसलिए जब भी आप उठें, अपने माइंड में ये सेट करें कि ये इन कामों को आज की तारीख के अंदर जो है वो मुझे पूरा करना है, और अपना सारा ध्यान पहले उन कामों को पूरा करने पर लगाएं, उसके बाद ही दूसरे काम जो है वो करें। बहनों, एक और नियम है, ईट द फ्रॉग। जी हाँ, ये क्या नियम है, दिन की शुरुआत सबसे कठिन या सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे चुनौतीपूर्ण जो कार्य होते हैं, उनको पूरा करने में सबसे पहले जो है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कार्य हमारे सबसे पहले हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो शांत रहता है कि हमारा वो काम जो है वो पूरा हो चुका है। हमारे सबके साथ यही होता है कि जो काम हमारा सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, उसको करने में हमें जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में पूरे दिन वही चीजें चलती है कि अगर ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ, इस काम को हम कैसे करेंगे, और अगर हम सबसे पहले हमारे चुनौतीपूर्ण कार्यों को ही निपटा लेते हैं, हमारा काम कर लेते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स मोड पर जाता है कि चलो सबसे जो भारी काम था, सबसे जो चुनौतीपूर्ण काम था, उसको हमने कर लिया, अब जो छोटे मोटे काम होते हैं वो हम आसानी से अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रेक लें, कार्य बदलें। लगातार काम करने से आपको बचना है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में सभी को जरूरत होती है आराम की, ब्रेक लेने की, ताकि आपकी ऊर्जा और क्षमता दोनों ही जो है वो बनी रहे। क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अन्य कामों को अच्छे से, घर के कार्यों को जो है वो कर सकती हैं। तो बहनों, सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने लिए ब्रेक लेना। दोपहर का जो समय होता है उसको

जो है वो अपने लिए निकालना है, आपको अपना पसंदीदा जो प्रोग्राम है महिला जगत उसको आराम से सुनना है रिलैक्स मोड पर, और प्यारे से गानों का और हमारी बातों का जो है वो आनंद लेना है। तो इसके लिए आप अपना समय जो है वो ज़रूर लें और अपना जो काम है उससे ब्रेक भी अवश्य लें।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
3: बहनों, हम बात कर रहे थे कि हमें काम को प्राथमिकता जो है वो देनी चाहिए। काम को प्राथमिकता तो देनी ही चाहिए, लेकिन हमें अपने शरीर को भी जो है सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हमारा अगर शारीरिक ढांचा ही सही रहेगा तभी हम जो है स्वस्थ रहेंगे और हमारे बाकी जो काम है वो पूर्ण हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारे शारीरिक ढांचा जो है वही अस्त व्यस्त हो जाएगा तो हमारी सारी गतिविधियां ही जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि थम सी जाती है। तो इसलिए सबसे जरूरी जो है वो काम के अलावा हमारे शरीर को प्राथमिकता जो है वो देना है। इन दिनों हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हम देख रहे हैं तो हमें ऐसे लग रहा है कि हमें अपने लिए जो है ना खाने के लिए समय है, ना हमें जो है अपने खुद के लिए कुछ करने के लिए समय है। यहाँ तक कि अगर हम कुछ सोचना भी चाहते हैं अपने लिए, चुपचाप कई बार होता है कि हम कुछ भी ना करें, सिर्फ बैठे रहें, तो उसके लिए भी हमारे पास में समय नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए, रुक गए, तो हमारा बहुत सारा काम जो है वो थम जाएगा, रुक जाएगा, हमें देरी हो जाएगी और हमारा शरीर ना चाहते हुए भी हम जो है उस काम को करने में लग जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो समय आ गया है उसमें हमें सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो अपने शरीर को देनी है और उसके लिए हमें ज़रूरी है अपना लाइफस्टाइल बदलना। जी हाँ, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बदलते हैं तो ही हम अपने शरीर को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है तभी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होता है। बहुत बार होता है हम बहुत सारी चीज़ों को

लेकर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो हम अपने दिमाग में कोई चीज़ को सेट इस तरह से बिठा लेते हैं कि वो काम अगर हमारे अनुरूप नहीं हो पाता तब भी हमें जो है वो मानसिक तनाव होने लग जाता है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर परिवार में, हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यस्थल पर, जिनको लेकर जो है हमारे दिमाग में वही चीज़ें जो है घूमने लग जाती हैं और हम किसी के साथ भी उनको साझा नहीं कर पाते। तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हम ये कह सकते हैं कि गड़बड़ा सा जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर देना है तो हमें जो है अपने आप को ये चीज़ें समझानी होगी कि हमें किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हमें किसी भी चीज़ के बारे में बार बार नहीं सोचना है। और वो तभी हो सकती है जब हम अपनी समस्याओं को जो है वो किसी के साथ साझा करें। अगर हम किसी भी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हम अपने कजन से, भरोसेमंद दोस्त से, परिवार के सदस्य से या फिर आजकल मनोचिकित्सक से जो है वो हम बेझिझक अपनी बातें जो है वो कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में जिनसे हम अपने मन की बात जो है वो साझा कर सकते हैं। आपको लगे कि हाँ ये इंसान हमारे भरोसे के लायक है, इससे हम अपने मन की बात साझा कर सकते हैं, कुछ सुझाव जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें अवश्य ऐसा करना चाहिए, उससे अपने मन की बात जो है वो करनी चाहिए। हर शाम को अपने जीवन में आप ऐसी 3 चीजों को जरूर नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं और उनके बारे में भी सोचें। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमारे पास में वो सभी चीज़ें हैं जिनके अभाव में बहुत सारे लोग जो हैं वो रहते हैं। और आप ये सोच सकते हैं कि जिनके पास जो चीज़ें नहीं है तो उनसे हम बहुत ज़्यादा बेहतर भी हैं। तो बहनों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ओवर थिंकिंग करने से जो है वो रोक सकती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को जो है वो बेहतर बना सकती है। जैसे कि एक तो आपको आजकल यही सबसे पहले करना है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, खास करके आपका फ़ोन, उससे आपको दूरी बनानी है आपके नींद के वक्त, क्योंकि हम बाकी सभी काम में जो है वो बिल्कुल भी अनदेखा, बाकी सभी काम को अनदेखा नहीं करते हैं। हमें यूँ लगता है कि ये काम तो ज़रूरी है, ये हमें करना ही है, लेकिन अपनी नींद को हम अनदेखा ज़रूर कर देते हैं अपने फ़ोन टाइमिंग के लिए। वो समय हमें ये लगता है कि यही समय जो है वो हमारा खुद का है। अगर हम थोड़ी देर के लिए जागकर फ़ोन देखते हैं तो हमें अच्छा अनुभव होता है, लेकिन अगर हमारी पर्याप्त नींद नहीं हो पाती है तो भी हमें वही चीज़ों का ध्यान रहता है जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। तो कोशिश करें अपने फ़ोन से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाकर आपकी जो नींद है वो पर्याप्त मात्रा में लें, ताकि आपको अच्छी नींद जब आए तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना रहे। इस तरह के और भी चीज़ें हैं जैसे कि रियलिस्टिक लक्ष्य जो है वो तय करना है, अपने शारीरिक गतिविधि बनानी है, इन पर भी हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमें बदलना होगा। लेकिन पहले प्यारा सा गीत सुनकर अपने मन को शांत करके खुश रखिए।

बहनों, हम बात कर रहे थे कि हमें जो है अपने लाइफस्टाइल को किस तरह से बदलना है। सबसे पहले हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, उसके बाद अपने लिए रियलिस्टिक जो लक्ष्य हैं उनको तय करना है। जी हाँ, रियलिस्टिक लक्ष्य का मतलब होता है कि हमें वही लक्ष्य जो है वो अपने लिए सबसे पहले तय करना चाहिए, जिनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और जो कि हमारे लिए सरल हो पूरा करने के, जैसे जो कि हम आसानी से पूरे कर सकते हों। धीरे धीरे उन लक्ष्यों से ही हमें आगे जो है वो बढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है कि संकल्प पूरा ना होने पर हम सबके मन में जो है वो यही होता है कि अगर हमारे कोई भी चीज़ जो है, हमारा लक्ष्य जो है, अगर हमारा पूरा नहीं हो पाता तो उसे हम बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो हमें अपने आप को जो है अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अस्पष्ट होने से रोकना है। अगर हमें अपने लक्ष्यों के ऊपर जो है वो सटीक और स्पष्टता दिखाई देती है, तभी उसके ऊपर जो है बहुत अधिक मेहनत करके जो है वो लगना है। कई बार होता है कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे करने के बस में नहीं होती है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना जो है हमारे, हम उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं कि उन लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर पाए, लेकिन फिर भी हम उनके लिए जी तोड़ मेहनत जो है हमें पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम जो है उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वो चीज़ पूर्ति अगर हमारी नहीं हो पाती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हम तनाव में आ जाते हैं। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और हम इसको पूरा कर सकते हैं। हम ये बात नहीं कह रहे हैं बहनों कि कठिनाई चीज़ों को, अत्यधिक जो कठिन चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्राप्त ही नहीं कर सकते या उनका लक्ष्य हमें रखना ही नहीं चाहिए। कोई भी अगर हार्ड कंपटीशन है तो उसके लिए हमें तैयार नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहनों। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमारे लिए एकदम असंभव होती है और उसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, तो बात हम उन्हीं लक्ष्यों के बारे में कर रहे हैं। हाँ, कंपटीशन टफ होता है, उसके लिए अगर हम दिन रात मेहनत करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी काबिलियत क्या है और हम कितनी चीज़ों को जो है आसानी से पूर्ति कर सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। तो हमें अपने लक्ष्यों को तय करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो लक्ष्य हैं उनके वो रियलिस्टिक हो और उनको हम आसानी से जो है वो पूरा करते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि अगर हम ये सोच लेते हैं कि एक दिन में ही मैं पतला होके ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो वो संभव नहीं है। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम ये कोशिश करें कि हाँ, मैं रोज का 20 मिनट के जो है अपना वर्कआउट करूंगी, तो ये संभव हो सकता है। तो इसी तरह के जो लक्ष्य हैं जिनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं, उनको हमें अपने दिन में जो है वो अपने दिमाग में तय करके रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपना स्क्रीन टाइम जो है वो सीमित करना चाहिए, हमारी शारीरिक गतिविधि जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो है वो फुर्ती बनी रहे, हमारा शरीर एक्टिव बना रहे, बैठे रहे।

की बजाय जो है अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर को एक्टिव मोड पर डालते हैं तो हम देखें कि हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और इसी के साथ हमें एक चीज जो सबसे जरूरी है, अपने रिश्तों की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। आजकल हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो इतना हो गया है कि हम रिश्तों को भूल से गए हैं, तो इसलिए हमें अपने रिश्तों की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। दिन का एक समय का जो खाना है अपने परिवार के साथ बैठकर अवश्य खाएं, उनके साथ बातें साझा करें, समय साझा करें, तो हम देखेंगे कि हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ जो है वो बेहतर बनी रहेगी।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से 2 बजे मिड डे न्यूज। 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचारों के लिए। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: Collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेव्स OTT है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करे। आपको

0: पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन

0: रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइंस पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात

गुरु केंद्र है FM 110.7 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आगाज किया था किशोर कुमार की आवाज के साथ। फिल्म थी पड़ोसन। इसमें गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे और संगीतकार आरडी बर्मन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अब आपको सुनवा रहे हैं पापोन की आवाज को। फिल्म है हमारी अधूरी कहानी। इसमें गीतकार सैयद कात्री है और संगीतकार मिथुन।

अभी आप सुन रहे थे सैयद कादरी की शब्द रचना को मिथुन के संगीत में, आवाज थी पापोन की, फिल्म हमारी अधूरी कहानी। फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने का अंतिम गीत हम आपको माफ कीजिएगा, अगला गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सच्चाई फिल्म से।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में अभी आप सुन रहे थे सच्चाई फिल्म का गीत। आवाज थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इसमें गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे और संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

अभी आप सुन रहे थे समीर के लिखे बोल को राम संपत के संगीत में। आवाजें थी अर्णब चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम खाकी।

तीन देवियां इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम तराने नए पुराने में। इसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार एसडी बर्मन।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

तराने नए पुराने फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत अभी आप सुन रहे थे सड़क फिल्म से। आवाजें थी अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास की। इस गीत को कलमबद्ध किया था समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। सायंकालीन सभा में शाम 4 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के चोरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ हमारी आज की सायंकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको यह सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है, जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य।

0: सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पे कार्य करते हैं और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
1: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप SSB एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
0: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, CAPF बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
1: जी जी।
0: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
1: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
0: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
1: जी, जी।
0: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
1: जी, जी।
0: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
1: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
0: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम है ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग, गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
1: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
0: जी,
1: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
0: बिल्कुल।
1: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
0: बिल्कुल।
1: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
0: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो

0: नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम सीसीटीवीज को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पे खड़ा है वो उस चीज़ में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं है, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर। और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है,
0: बिल्कुल,
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहे
0: बेसिकली
1: हैं?
0: जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है,
1: जी
0: और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
1: जी,
0: जी
1: जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
1: जी
0: तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है, तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव
1: और
0: किया है।
1: आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं आप सीटीसी में, ये कितने समय से हैं?
0: मेरे को अभी 1 साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर। ही इज सेकेंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक, क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों,
1: ये आपको बहुत प्रिय है
0: बहुत प्रिय है,
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था,
1: जी,
0: तो दिल को छूता है ये सॉन्ग।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स, जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।
2: Yeah!

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर के, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे

0: सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
1: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला है उसे रखकर कोई चीज़ सॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत
1: ये सब एसएसबी कर रही है।
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रिक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी,
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी,
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
1: पनिशमेंट,
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद के तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने

0: मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था।
1: हाँ मैं ज़रूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
0: जी
1: चाहूँगा कि
0: प्लीज।
1: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ

0: मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से, अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके
1: जी
0: बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन।
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए,
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके, जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी।
0: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी,
1: जी
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो
1: जी
0: एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके,
0: बिल्कुल
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीसी में जो ट्रेनिंग आप दे रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
1: जी
0: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया
1: लगभग
0: हमारे उसमें
1: सभी।
0: सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है,
1: जी
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है, तो बहुत अच्छा
1: और मेरे ख्याल से
0: रहता
1: आप ट्रेनर

0: तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है।
0: जी
1: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के, ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी।
1: बिल्कुल,
0: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं?
1: हाँ,
0: शादी
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप
0: जी,
1: वो कहिए, तो वो आता है तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं
1: जी।
0: तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी,
0: मॉडर्न पढ़ाइयाँ हो रही हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का या?
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी.
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम है हर चीज के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ, बिल्कुल
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सैल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड

0: डायरेक्टर्स हैं, उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
1: ओके।
0: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकेंड इन कमांड वहाँ पे
1: जी।
0: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
1: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज़ ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज़ ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और हैं, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
0: थैंक यू।
1: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं, महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन अच्छा। लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
0: जी।
1: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
0: धन्यवाद है यश का।
1: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
0: जी।
1: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर? ऑलराइट। यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है, दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
0: जी, जय हिंद बाबूलाल।
1: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहां पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है, एंड आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
0: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सेलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
1: ओके।
0: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को, और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
1: ऑलराइट
0: जी,
1: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू एसएसबी के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
0: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
1: बट सुझाव अच्छा है,
0: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
1: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है
0: कुछ जो

0: वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है
1: जी
0: उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको एएनओ नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं,
1: जी
0: उसके अलावा उन्हें जेएनके हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
1: ऑल राइट, टीपीटी सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा
0: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे
1: है। ओके,
0: जी।
1: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते
0: बिल्कुल
1: रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
0: जी
1: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
0: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके,
1: जी
0: उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख
1: तो
0: पाएंगे।
1: यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया,
0: नहीं
1: AI का
0: नहीं
1: जमाना आ गया,
0: वो
1: आप
0: तो
1: लोग
0: नहीं,
1: AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
0: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं,
1: जी जी जी
0: बट ये है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत
1: एब्सोल्युटली।
0: सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
1: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
0: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नजर दोनों ही तरफ से रखी जा रही है, और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद
1: जी
0: जो है उन पे नजर रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी
1: तो
0: हुई है।
1: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
0: बिल्कुल,
1: हम
0: हम भी
1: बिल्कुल
0: तैयार हैं, बिल्कुल
1: चौकन्ने हैं।
0: बिल्कुल
1: CTC श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा
0: सब, आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
1: है। महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा।
0: धन्यवाद।
1: ऑल राइट, 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, तो क्या कहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं, और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका, हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
1: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है, महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
1: अच्छा।
0: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
0: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
1: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। FM 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM, जहां हम लेकर आए हैं आपका यूथ स्पेशल प्रोग्राम युवानी, जहां आप सुन रहे हैं आपकी आरजी दोस्त भावना को। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में, जहां का आज का खास सेगमेंट है बातें रेडियो की। दोस्तों, हर गुरुवार हमारा ये सेगमेंट रहता है। इसमें आपको आकाशवाणी के ऑफिशियली पेज पर, यानी कि आकाशवाणी के सोशल मीडिया के ऑफिशियली पेज पर एक टॉपिक हर सुबह जो है वो दिया जाता है, और उस टॉपिक पर हम हमारे श्रोताओं के जो विचार है वो जानते हैं कमेंट्स के जरिए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आवाजें हमारी होती है, लेकिन राय, नजरिया, सोच, विचार वो सारे आप लोगों के ही होते हैं। तो बस हर गुरुवार की तरह आज फिर हम आपसे जुड़ गए हैं बातें रेडियो के लेकर, जहां आज आपको सुबह एक टॉपिक जो है हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए दिया गया था। और आज का टॉपिक दिया गया था दोस्तों, रेडियो पर सुने गए अविस्मरणीय कार्यक्रम। इस टॉपिक पर हर श्रोता को अपने अपने विचार जो है वो बताने थे। हमारे दोस्तों के, हमारे श्रोताओं के विचार शामिल करने से पहले कुछ बातें जो है हम आपसे कर लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बातें, कुछ आवाजें और कुछ पल ऐसे होते हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारी यादों में हमेशा ताजा बनी रहते हैं। जब भी उनका जिक्र होता है, मन फिर उसी दौर में पहुंच जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी एक खास दौर की। रेडियो पर जो है दोस्तों, केवल मनोरंजन की चीजें जो है वो नहीं की जाती, बल्कि ये करोड़ों लोगों की भावनाएं, उनकी उम्मीदें और साथ ही साथ यादों का साथी भी रेडियो रहा है। एक समय था जब घर के आंगन में रखा छोटा सा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देता था। शाम होते ही लोग अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो के आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे। कई ऐसे कार्यक्रम रहे होते थे जिनमें न केवल मनोरंजन किया जाता था, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी जाती थी। दोस्तों, कुछ कार्यक्रम जैसे कि देशभक्ति वाले होते थे, कुछ शिक्षा का संदेश देते थे और कुछ लोगों को दिल को छू देने वाली कहानियां सुनाते हैं। कई बार रेडियो की आवाज दूर दराज के गांवों तक उम्मीद की किरण पहुंचाती है। और कहा भी गया है दोस्तों, आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती, वे यादों के आंगन में हमेशा गूंजती रहती है। और रेडियो की यही खासियत है कि यहाँ शब्दों के सहारे कल्पनाओं की दुनिया बनती है। श्रोता केवल सुनता नहीं, बल्कि हर दृश्य को अपने मन में फील करता है, महसूस करता है। और शायद यही कारण है कि रेडियो पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, वो कार्यक्रम लोगों के दिलों में बसे होते हैं, दिलों से जुड़े होते हैं। और जब भी किसी कठिन समय की बात अगर हम करें, तब रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की जो है वो जिम्मेदारी जो है उठाई है। जब मनोरंजन की बात होती है, तब गीत संगीत, नाटक, ये सारी जो है वो लोगों के जीवन में खुशियां भर देते हैं। और जब प्रेरणा की बात होती है, तब रेडियो अनेक ऐसे अपने कार्यक्रम के जरिए नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास जो है वो पहुंचाता है। एक खूबसूरत सी लाइन दोस्तों याद आ रही है, लफ्जों में ताकत हो तो दूरियां मिट जाती है, लफ्जों में ताकत हो तो दूरियां मिट जाती है, और आवाज में अपनापन हो तो दिलों में जगह बन जाती है। तो बस दोस्तों, याद रखिए कि

वही एक आवाज है जो आपको और हमें उस अपनत्व के कारण जोड़े हुए हैं। तो बस यादों की इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं उन सुनहरे पलों की जो हमारे श्रोता साथियों ने हमारे साथ, हमारे इस रेडियो के साथ और इस पूरे आकाशवाणी परिवार के साथ जिया है, जहां रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बना उनके लिए, बल्कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो बस बने रही हमारे साथ हमारे इस आज के सेगमेंट बातें रेडियो की में, क्योंकि अब ब्रेक के बाद हम जो है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं हमारी आवाजों के जरिए हमारे श्रोताओं के विचार, उनकी आवाजों के थ्रू, हमारी आवाजों के थ्रू उनकी आवाज। तो बस बने रही कार्यक्रम में। फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

जी बिल्कुल, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। खास सेगमेंट चल रहा है बातें रेडियो की, जहां हम बातें कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले आज के खास सेगमेंट के बारे में। और अब समय हो गया है हमारे श्रोता साथियों के बातों को, उनके विचारों को शामिल करने का, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं हमारी रेडियो सेट के जरिए आकाशवाणी के ऑफिशियली पेज पर कमेंट्स के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक एक बार फिर आपको बता दें, आज का टॉपिक है रेडियो पर सुने गए अविस्मरणीय कार्यक्रम। हर श्रोता को अपने विचार, अपनी यादें और जो भी कार्यक्रम उन्हें पसंद आते थे उन्हें बताना है। शामिल करते हैं भवानी सिंह राठौड़, जो हमें लिखते हैं गांव टाड़ा सुजानगढ़ से हमारे श्रोता के विचार। वो लिखते हैं कि रोजाना रेडियो सुनना मानसिक शांति, भाषा सुधार और बहुकार्यन यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए अत्यधिक लाभदायक है। बिल्कुल भवानी जी, एक रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम हमारे काम को तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम मनोरंजन या फिर अपने आप को एनर्जेटिक भी जो है वो बना सकते हैं। आगे ये लिखते हैं कि यह सस्ता, सुलभ और सबसे पुराना संचार माध्यम है, जिससे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के अनुसार समाज का हर एक वर्ग आसानी से उपयोग कर सकता है। जी बिल्कुल, सबसे सस्ता और सुलभ, आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला ये साधन है। रेडियो सुनने के लिए प्रमुख वैज्ञानिक और व्यवहारिक लाभ जो है इन्होंने बताए हैं, ये लिखते हैं कि तनाव कम करता है। बिल्कुल, साथ ही साथ रेडियो पर संगीत और प्रेरक कार्यक्रम सुनना दिमाग में डोपामाइन यानी कि खुशी देने वाला हार्मोन बढ़ाता है। बहुत ही खूब कहा आपने भवानी जी कि आज के समय में हम बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, छोटी छोटी चिंताएं जो है वो हमें घेर लेती है, उसी में ये जो रेडियो है एक छोटा सा एक ऐसा साधन है जो अगर हम सुनते रहें तो शायद हमारे दिमाग में जो अननेसेसरी जो चीज़ें चल रही होती है, बहुत सारी बातें चल रही होती है, उनको इग्नोर किया जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा डोपामाइन यानी कि खुशी देने वाला हार्मोन भी जो है वो इसके जरिए हमें इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बार बार हमारा पसंदीदा संगीत सुनते हैं या फिर किसी आवाज़ के जरिए कोई मोटिवेशनल या फिर जानकारी देने वाला या फिर कोई सूचना वाला कार्यक्रम सुनते हैं, तब हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खुशी मिलती है। और यही रीज़न है कि साथ ही साथ हमारा तनाव वाला जो लेवल है वो कम करता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही खूब बातें कही कि रेडियो जो है वो ना केवल मानसिक शांति का बल्कि और भी बहुत सारे चीज़ों के कारण हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भवानी सिंह जी राठौड़ जो हमारे साथ जुड़े सुजानगढ़ से, अब एक और शामिल करते हैं अगले श्रोता के विचार, जो हमें लिखते हैं विनोद कुमार अपने बेटी अजय सिरोहा और मनीष सिरोहा के साथ। ये लिखने वाले हैं गाँव गोगा मेड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ से। सबसे पहले इन्होंने पूरे आकाशवाणी टीम को अपनी तरफ से राम राम कहा है, और बिल्कुल आपको भी पूरे आकाशवाणी टीम की तरफ से आपका भी सादर अभिनंदन। ये आगे लिखते हैं कि आज के इस खूबसूरत से सफर में मैं अपने परिवार के साथ आपके आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हमारे लिए रेडियो पर सुने गए कार्यक्रमों में शाम को बुजुर्गों के साथ बैठकर सुनी जाने वाली चौपाल, रात का मशहूर नाटक हवा महल और दोपहर का सखी सहेली कार्यक्रम आज भी अविस्मरणीय है। बिल्कुल सही कहा विनोद कुमार जी आपने, एक समय था जब ये कार्यक्रम जो है वो इतने फेमस थे कि इन्हें सुनकर लोगों के दिन बन जाया करते थे। यानी कि इनसे पता चलता है कि आप जो है वो कितने पुराने लिसनर जो है हमारे रेडियो के रहे हैं। और आगे ये लिखते हैं कि उस दौर में स्थानीय कलाकारों की आवाज में राजस्थानी लोकगीत और होली के दिनों में चंग की थाप रेडियो पर सुनना एक अलग ही सुकून देता था। बिल्कुल, आपकी बातों से पहले ही हमें पता चल गया है कि आप एक खास और एक बहुत ही पुराने हमारे रेडियो के लिसनर हैं, और साथ ही साथ इतनी रेडियो के कार्यक्रमों की जानकारी और उस समय से जब आप जुड़े हुए हैं तो हमें ये जानकर अच्छा लगता है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए कि ऐसे भी श्रोता है जो इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपके यही विचार जानकर, आपकी यही बातें जानकर आप हमारे साथ जब जुड़ते हो तो कार्यक्रम देने के लिए हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये लिखते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में भी चूरू रेडियो की वो पुरानी यादें और कार्यक्रम हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगे।
बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद कुमार जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपकी बातें जो है वो आपने हमारे साथ शेयर की, और पता चला कि इतने सारे खूब सारे हमारे लिसनर्स हैं जो दूर दूर तक हमें सुनते हैं और हमारे इस आकाशवाणी टीम का, इस आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, बातें रेडियो की सेगमेंट में और भी खूब सारी बातें आपके साथ करेंगे, श्रोताओं के विचार भी जरूर आपको सुनवाएंगे, साथ ही आपके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: जी स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर कार्यक्रम चल रहा है युवानी, और खास सेगमेंट है बातें रेडियो की, जहां हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के विचार। शामिल करते हैं

सबसे पहले पूरी आकाशवाणी टीम को इन्होंने नमस्कार लिखकर भेजा है, हार्दिक अभिनंदन लिखकर भेजा है और कहा है कि आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है। आगे ये लिखते हैं कि रेडियो के माध्यम से सुनी गई बातें और कहानियां हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाती है। बिना किसी दृश्य के केवल आवाज और जादू, शब्दों की उतार चढ़ाव से जो कल्पना हमारे मन में बनती है, वो कल्पना जो है अविस्मरणीय होती है, वो हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय बन जाती है। आगे ये लिखते हैं कि रेडियो पर सुनी गई कुछ ऐसे ही अनमोल और अविस्मरणीय अनुभवों की झलक हम बता रहे हैं। पहले ये बताते हैं कि आवाज़ का गहरा जादू, रेडियो पर किसी वक्ता यानी कि आरजे की दमदार आवाज़ या किसी कवि का अपनी ही कविता को गुनगुनाने का अंदाज सीधा दिल को छू जाता है। वह आवाज़ कभी कभी किसी अपने की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। बिल्कुल, बहुत ही खूब कहा लालगिरी गोस्वामी जी आपने कि जब हम कभी किसी की बातों से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तब वो बातें हमें किसी हमारे अपने की आवाज़ या उसकी मौजूदगी का एहसास करवा देती है। आगे लिखते हैं कि पुरानी यादें और संगीत का सफ़र, जब रेडियो पर अचानक कोई पुराना या फिर अपना पसंदीदा गीत बज उठता है, तब वह हमें पुरानी यादों के उस दौर में ले जाता है जहाँ से वे गीत जुड़े होते हैं। वह अनजाना गीत उस पल के लिए हमारे सबसे लिए एक सबसे अच्छा साथी बन जाता है। आगे लिखते हैं कि प्रेरणादायक कहानियाँ रेडियो पर अक्सर सुनने को मिलती हैं। ऐसे प्रसारणों में कही गई बातें अक्सर हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और पॉजिटिविटी देती हैं। ऐतिहासिक पल और घोषणाएं, इतिहास में ऐसे कई क्षण रहे हैं जब लोगों ने बहुत सी इम्पॉर्टेंट घोषणाएं की हैं, जैसे कि आज़ादी के समय नेताओं के संबोधन रेडियो पर ही हमने सुने हैं। वे आवाज़ें और शब्द आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आगे लिखते हैं, अनौपचारिक जुड़ाव आरजेस के साथ और साथ ही साथ रेडियो जोकी का बात करने का अपना एक निराला अंदाज होता है। आधी रात के शो में उनकी कही गई बातें, उनके चुटकुले या फिर किसी श्रोता की दिल की बात साझा करने का तरीका ऐसे होता है मानो कोई दोस्त सीधे हमसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालगिरी गोस्वामी जी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी मनोबल को बढ़ाने वाली बातें जो है वह आपने हमारे साथ शेयर की। कार्यक्रम में आप जुड़े इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए दोस्तों, सुनवाते हैं आपको एक फिर प्यारा सा गाना।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण।
6: श्रोताओं, बातें कर रहे हैं हम युगवाणी के खास सेगमेंट बातें रेडियो की में, और शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के विचार। अगले हमसे जुड़े हैं हमारी श्रोता विष्णु मिस्कीन, जो हमें लिखते हैं सोलापुर से। इन्होंने लिखा है कि रेडियो पर सुने गए अविस्मरणीय कार्यक्रम केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का खजाना है। वर्षों से रेडियो पर प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान बनाए हुए हैं। मेरे लिए वे कार्यक्रम अविस्मरणीय हैं, जिनमें मधुर गीतों के साथ रोचक जानकारी, प्रेरणादायक विचार और श्रोताओं की सहभागिता देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आगे ये लिखते हैं कि विशेष रूप से पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइश वाले कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, नाटक, बाल कार्यक्रम और विशेष अवसरों पर प्रसारित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा याद रह जाते हैं। आगे लिखते हैं कि इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति, उद्घोषकों की मधुर आवाज और श्रोताओं से जुड़ाव उन्हें और भी खास बना देता है। रेडियो की यही विशेषता है कि वह केवल सुनाई नहीं देता, बल्कि मन में उतर जाता है। आगे लिखते हैं कि कई बार कोई गीत, कहानी या फिर चर्चा वर्षों बाद भी स्मृतियों में ताजा बनी रहती है। इसीलिए रेडियो पर सुने गए ऐसे कार्यक्रम सचमुच अविस्मरणीय होते हैं और जीवन भर हमारी यादों का हिस्सा बने रहते हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही धन्यवाद विष्णु जी आपका, और इतने अच्छे और हमें मोटिवेट करने वाले विचार जो है आपने हमारे साथ जो है वो शेयर किए हैं, जिससे पता चलते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लिसनर्स हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनको किस टाइप के हमारे प्रोग्राम्स पसंद है, किस तरीके से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, श्रोताओं की फरमाइशों वाले कार्यक्रम, जी बिल्कुल, बेशक बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो उनके जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं। कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, कुछ जानकारी वाले, कुछ मनोरंजन वाले और कुछ ज्ञान वाले, लेकिन इनके अलावा भी जो फरमाइशी कार्यक्रम होता है उनमें आप और हम सीधा जुड़ते हैं, और तब वो कार्यक्रम और भी खास बन जाता है आपकी वजह से। तो बस दोस्तों, आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, लिखने वाले हैं भेरूलाल। वाकतरिया धाकड़। ये हमें लिखते हैं जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इन्होंने भी यही कहा है कि देश की सुरीली जो धड़कन है वो कार्यक्रम और ये जो कार्यक्रम हम सुनते हैं रेडियो के जरिए वो बहुत ही हमें हास्यास्पद झलकियां जो है वो सुनाते हैं, साथ ही साथ इनकी जो झलक है वो हमारे कानों में रच बस जाती है, बार बार सुनने का ये मन करता है। बहुत ही शुक्रिया आपका भेरूलाल जी, आपने भी बहुत ही खूब अपने विचार हमारे साथ लिखे और कार्यक्रम में हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए हर रोज कुछ नया और कुछ बेहतरीन लाने की, और आप ही की ये जो बातें हैं हमारे मनोबल को और बढ़ाने वाली होती है। तो बस सुनिए एक और प्यारा सा गाना और फिर और सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं के विचार।

जी श्रोताओं, बात है रेडियो की में अगले जुड़ने वाली हमारी नियमित श्रोता है सादुल शहर श्री गंगानगर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ये लिखते हैं, वैसे तो आकाशवाणी से प्रसारित सभी प्रोग्राम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सुनते भी हैं। जिनसे हमें नई जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, मनोरंजन मिलता है और देश में घटित घटनाओं पर आधारित समाचार सुनकर हमें समाचारों से अवगत होने का अवसर मिलता है। इसीलिए प्रोग्राम सभी कुछ ना कुछ हमें देकर जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक जुराब रखने वाला कार्यक्रम मानस गान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे हर एक बार अंतरात्मा से सुन लिया तो वह प्रोग्राम हमेशा नियमित रूप से सुने बगैर नहीं रह सकते। आध्यात्मिक विचारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलें। बिल्कुल राम कुमार जी, आपकी इन बातों से हम जो है वो पूरी तरीके से सहमत हैं कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे ना केवल रेडियो के प्रोग्राम हो, बल्कि किसी भी चीज़ से, तो वो बातें जब इतनी मोटिवेशनल या इतनी प्रेरणादायक होती है कि कभी कभी वो हमें हमारे अंदर तक इतनी प्रेरित कर देती है कि हम उन्हें हमारी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, हम उन बातों से इतने प्रभावित होते हैं कि वो हमारे जीवन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो बस चाहे बातें या प्रोग्राम आध्यात्मिक विचारों की हो या फिर मनोरंजन की हो या फिर प्रेरणा की, बस हमें हर बार हमारी ज़िंदगी में अच्छाई के मार्ग पर चलना है। और ये अच्छाई का मार्ग चाहे हम रेडियो के जरिए प्रोग्राम को सुनकर करें या फिर किसी और जरिए, बस हमारी ज़िंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि हम हमारी ज़िंदगी में सही मार्ग पर चलें और हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे अपनों के लिए कुछ बेहतरीन कर जाएं। प्रोग्राम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी। और साथ ही साथ श्रोताओं, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, मोहम्मद अनवर अली, मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, जावेद, सूरज, अख्तर, जासमीन, सकीला, सना, समा, हीना, रजिया, सुल्ताना और साथ ही साथ इनके पूरे परिवार। ये लिखते हैं कि हम आकाशवाणी चुरू के प्रोग्राम को, सारे प्रोग्राम को दिल लगाकर सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी आपका, आप ही के ऐसे विचार, ऐसी बातें हमें जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। आप हमारे साथ जुड़े प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

जी दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम बातें रेडियो की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर हर गुरुवार आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप आकाशवाणी चूरू के ऑफिशियली पेज पर सोशल मीडिया का जो हैंडल है उसके जरिए जुड़ सकते हैं। हर गुरुवार सुबह आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आवाज़ें हमारी होगी, विचार सोच आपकी होगी। शाम 5 बजे जो प्रोग्राम शुरू होता है उसके लिए आप 4 बजे तक जो है वो कार्यक्रम में अपने विचार, अपने कमेंट्स, जो भी लिखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, हमें भेज सकते हैं। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भी आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दें आपकी आरजे दोस्त भावना को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे यशोदाओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और शाम 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। 6:20 पर आप सुनेंगे

हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7:00 आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी। चर्चा होगी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में और संतुलित पशु आहार के महत्व के बारे में। साथ ही सुनाए जाएंगे आपको लोकगीत और लोक भजन। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 8:00 आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत में गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9।

रात्रि नमस्कार 15 मिनट पर एक बार फिर लुत्फ लिया जा सकेगा राजस्थानी लोक संगीत का। रात्रि नमस्कार 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम कंट्री वाइड। रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका और 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गजल। सभा के अंत में रात्रि 11 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अभी आपने जाना कार्यक्रम विवरण। FM 110.7 MHz ब्रह्मा आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

0: हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत। शाम के 6:20 होने को हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, तो दोपहरांत 6:30 पर जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
0: जी हाँ,

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और

राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास

0: में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: इसके बाद श्री वैष्णव ने MNIT में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। PBM अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे

0: एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ सतीश पूनिया, डॉ अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
1: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ मीणा ने 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मानसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला। इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर।

0: अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन कीनो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकार ने भेड़ी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद बातचीत और विचारान और लेन देन भी होनु चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई कौशल विकास और नौजवाना ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन माथे सरकार रो खास ध्यान वेवन री बात कही जी। ईसा गई महिलावारी अगुवाई माए विकास उद्यमिता खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रबारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर माए आकाशवाणी रा परिसर जैसलमेर जिला रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट बूता वाला FM रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। ई मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका माए संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे
0: NDA सरकार रेला रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: कार्यक्रम में राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुरी सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकार मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी और AI लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वे विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन माथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र माए राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन माए शामिल भिया। वह प्रदेश

0: भाजपा मुख्यालय में खबर नवी गई बातचीत की। केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वे नशा मुक्त भारत अभियान रातेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम में खास पावना रातोहरू शिरकत करेला। मारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह में शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल में जापा वाली लुगाइया री तबियत खराब भेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर में डॉक्टर और अहलकार सागे मीटिंग कीनी और हालात रो जायजो लीनो। वह अस्पताल में भर्ती महिलाओं री साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइया रा परिवार वाला सागे बातचीत कर और वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिरायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि मामला री विगतवार जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ई मामला न लेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज पीबीएम अस्पताल परिसर में सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो और नारा लगाया। वे वाकया री आला दर्जा री जांच करावण और दोषियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। इस दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज करनो पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में जैविक खाद बनावण रा कारखाना में कथित गड़बड़िया रो खुलासो कीनो। वह कानोतारा एक कारखाना में तय मानका रा इतर जैविक खाद बनावण री ठाकीनी। कृषि मंत्री ई खाद रा कट्टा और लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावण वाली बताई। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा बतायो कि काश्तकारा सागे किड़ी भांतरी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करी जावेला। वह कहो कि नकली खाद बीज बेचण वाला रे खिलाफ आखा राज्य में अभियान चलायो जा रियो है और दोषी मिलन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रा चुनिया जावन रो ऐलान कीनो और वाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरां में साफ सफाई, सड़कां री मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करण समेत जनता रा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो लेवण सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि लाडला बरसां री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावन पर ब्याज माए पूरी छूट दी जावेला।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देशित किया कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान के अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासारी ऋतु में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदाओं रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माए हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगला बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव तय करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम, प्रदेश में पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीच आज कठे कठे मौसम में बदलाव रा आसार है। बारह जिला माए आंधी बारिश सारू चेताईचियो है जिसके कठे कठे ओला पड़बारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवन री राय दी रिची है। ये बीचे आज कई ठोड़ा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीचे दर्ज करीचियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा मत है साइबर अपराधा रा बद्धता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र री ओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है जहाँ नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जॉब पोर्टल डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेल और बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय कानून जारी अधिसूचना रे मुजब 22-25-27-30 फीसदी एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून न विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी फैला इंसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 मत है 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माय उथल पुथल रा मौजूदा दौर माई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माय बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माय 20 kW FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेशों राज्यसभा चुनाव माय 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माय। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
3: FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षी।

0: से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने भाई तेजे का निशु
4: और भाई अर्जुन का निशु
3: मोकला
4: मोकला राम राम तेजा भाई राम राम
3: राम राम राम राम अर्जुन भाई राम राम।
4: और तेजा भाई देखो बाहर मौसम है ना,
3: मौसम वो
4: देखो के बावड़े की दरकार जोरदार चल
3: रहा।
4: और देखो सागे सागे अभी देखो के लुक को भी फटकार थोड़ा सो लाग रही है।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब तो एकदम वक्त इन तरीके को ही है के तावड़ो तो सदा ही पड़िया करे, कदे घणो और कदे थोड़ो कम है, पण लगे चिट्टे सी पड़िया करे। ध्यान रखनो चाहिए वो घरा बारे जरूरी काम हो जदी निकलिया करे, नहीं तो आपको पड़ियो रे छांग मा।
4: और एक मन अभी देखो तेजा भाई के जिया तावड़ो जो चाके पड़सी लू जोर के चालसी ना, तो अगला जगह दिन है ना बम अपनी आस बनसी के हाँ बरसात पानी जोर के होसी जमाना बढ़िया।
3: क्या करता भाई, धरती जीती तपेगी ने इतनी ज्यादा मांग करेगी पानी की,
4: पानी की मांग करेगी
3: और मांग धरती मांग करे ना जब बरसात आवे,
4: जब बरसात आवे।
3: तो आज अर्जुन भैया एक ठावड़ी सी बातड़ी है के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की।
4: अच्छा,
3: विकास योजना 2007 में सरकार चालू करी, केंद्र सरकार बिंग बाद में इन थोड़ा परिवर्तन करियो और इनको नाम कर दियो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है PMRKVY। अब आ योजना के पहली तो आ एक छोटी योजना ही, बाद में के करियो इंक में सुधार करके और इन कई सारी कृषि योजना शामिल कर दी मतलब एक जगह कर दी,
4: संशोधन करके।
3: हाँ, संशोधन करके। और इनको फायदो ओ यो के इनके मां जो को अनुदान वगैरह है ने, वो भी सरकार है जो को बढ़ा दियो और कई सारी मिलेड़ी योजना है जो क्या नाक नाके को फिरनो पड़े वा एक जगह कर दी। और इनकी खास बात आ रही के जका आपनो जो को फेडरल सिस्टम है ने केंद्र को, तो केंद्र राज्य ने पूरी योजना की छूट दे दी के भी थे थारे हिसाब हों और कृषि की नीति इन पे बना सको कृषि योजना की थे खुद प्रारूप तैयार कर सको। और बे के लिए आ है कि 60-40 को अनुपात है कि 60 रुपया केंद्र सरकार देसी, 40 रुपया राज्य सरकार देसी। और किसाना ने प्रोत्साहन देने वास्ते और अच्छी अच्छी फसल मतलब तैयार करने वास्ते इनके मां अनुदान की व्यवस्था करी गई। इनके मां कोई भी काम किसान भाई करे तो वो अनुदान के लिए नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जा सके और जानकारी ले सके। एम के सोचो के भी किसान की आय है बात दूनी क्या करा,
4: दूनी क्या आय बढ़े,
3: आय बढ़े तो बैंक के लिए अपन को जतन तो करना पड़सी। अब अनुदान तो सरकार इन खातर दिया करे कि भाई किसान है बैंक के थोड़ी लागत कम हो जा और आमदनी शुरू हो जा बैंक के लिए अनुदान हुआ। अब के लोग बाग के ईशा भी हो जका सिर्फ अनुदान नहीं है डिके गए, काम तो करना को नहीं, अनुदान ही ले लिया। वे लोग है जका योजना फैल करने लोग हुए नहीं करना चाहिए। योजना कोई भी सरकार बनावे ना अनुदान ही खातिर दियो जाए कि भाई योजना धरातल पर उतर जा
4: कोई कमजोर किसान हो भी आगे बढ़ने को
3: फायदा हो जाए। और इनके मान देखो उच्च मूल्य की फसलें है, चाहे वे सब्जियां हो चाहे वे फल फ्रूट हो है, उच्च मूल्य की फसलें है जो की हाथों हाथ बिकन वाली हो और नकदी भी हम ज्यादा वापरे वे फसल की इनके मां ज्यादा वो महत्व रहा, क्योंकि किसान इन तरीके का नवाचार करे हैं, कोई स्टार्टअप करे खोले तो वो भी इनके मां शामिल है और अनुदान के लिए सरकार ने आवेदन कर सके। पर इनके मायने

0: मुख्य बात आई है कि देखो कई किसान हैं जका किसान तो कोने करे खेरे पर हांडता फिरते जका किसान को चोड़ो पर रखे है पर किसान को नहीं हो भाई किसान को चोड़ो पर रखे
1: चोड़ो पर रखे
0: कि मैं किसान हूँ मैं किसान हूँ तो वह क्या करेगा कि भाई योजना को लाभ लेने वास्ते उल्टा सुल्टा झूठा कागज पत्र पानड़ा लगा के योजना खराब करने की कोशिश करे
1: करीजा
0: योजना लाभान्वित जदि हो ना जब योजना धरातल पर उतरे पारदर्शिता के सागे और पारदर्शिता जद आवेगी जद जन भागीता सब ज्यादा बढ़ेगी
1: बढ़ेगी।
0: अब सगला किसान भाई इन योजना के बारे में जानकारी रखनी शुरू कर देने तो बने हरेक चीज को ध्यान हो जा है ना। फिर की है कि जब योजना पूर्णतः लागू जी आपने किसान क्रेडिट कार्ड है अब हरेक किसान ने ध्यान पड़ गयो कहीं कमा कोई अब फर्जीवाड़ो को नहीं हो सके पहले शुरू शुरू को मैंने की होगा फर्जीवाड़ा लोग कर देता अब को नहीं हो सके क्योंकि हरेक किसान है जिनके ध्यान है योजना को पूर्ण भी कमा भी है तो मुख्य उद्देश्य ये हो कि कृषि उत्पादकता में सुधार और कृषि बुनियादी ढांचो है विकास करना कि भाई जमानो जहाँ बदले ने भी साबु विकास की जरूरत है। आगे आगे जनता बढ़ेगी मांग बढ़ेगी मांग की पूर्ति करने वास्ते अपन योजनाओं में बदलाव करना पड़ेगा
1: पक्का पड़ेगा
0: है ना। तो पहले तो मैं पर आधारित खेती अब धीरे धीरे देखो सिंचित तरीका अपना लिया ड्रिप सिस्टम आ गयो और अलग अलग तरीका आ गयो अब धीरे धीरे देखो पोली हाउस वगैरह एन की चीजें आगमा महंगी महंगी फसल लगाई जाए।
1: एक जगह भी देखो कि जखी भी योजना है जहाँ पहले तो शुरुआत में था कि खेती बाड़ी के कानी ध्यान दो भी के सागे सागे ई योजना के सागे नया नवाचार करो जिया मान लो कोई पशुपालन कर लियो एक सागे जोड़ दियो मछली पालन को है एक साग कर दियो बागवानी लगा हुआ है तो एक साग कर दियो नई नई तरीके से हर योजना को लाभ किसान ने कहीं पुग गए। अब जहाँ कई किसान है तो एक योजना से जुड़े रहो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ जुड़े रहा खेती को भी नवाचार करिए तो जो मान लो कोई डेयरी व्यवसाय करिए भी मैं कोई नवाचार कर रही है या मुर्गी पालन को कर लो या मछली पालन को कर लो जो खुद ही है। कई किसान यहाँ देखा कि भी अब का सीजन बढ़िया है तो बागवानी कर लिया कोई फूल को फूल लगा ले बांका पौधा लगा ले या कोई फल फ्रूट है बांका लगा ले
0: बिल्कुल
1: हर प्रकार को नवाचार करो भी देखा है कि भी सरकार यहाँ देखा और कोई नवाचार करिए तो एक अनुदान अपने देना योग्य व्यक्ति है
0: बिल्कुल
1: के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: भाई अर्जुन भैया के योजना कोई भी हो है। अब आप काम कर सने तो कमा अब कई किसान है जिसका अब होली टिपता ही छोटकड़ी टिंडसी आ गई अब 100 रुपया किलो टिंडसी मिले में
1: मिले ऐसा
0: है ना। और थोड़ी सी जगह में बाड़िया कमाई ने 100-150 से बेल लगा दी हम 15-20 किलो रोज की टिंडसी लाजिया अब 2,000 रुपया रोज की अगर आपने पैदा होगी जब घने ही हो गया देख लेते
1: आमदनी होगी आपने
0: आमदनी होगी ने नगद आ गया अच्छा लोगों ने सुविधा मिलगी कभी देसी टिंडसी मिलगी ये लोहिया काचरे काकड़िया वगैरह तो क्या पैदा हुआ बैंक के साथ साथ फसल तो खैर आप परंपरागत लेकिन हाथों हाथ आया
1: नगद पिसा
0: वे बुजुर्ग की चीज है। अब काकड़िया लोहिया काचरे ए थोड़ा सीजन पहले जो बाजार में जाने तो भाव ठीक मिले
1: भाव ठीक
0: फिर आलो बोझ हुए आलो बोझ हुए एक काकड़ी 1.5 किलो हो गया
1: अबार 40 रुपया 20 रुपया किलो सीधा
0: तो इस तरह का जगह छोटा छोटा काम है हम लागत को नहीं आओ ज्यादा बस थोड़ी सी रामायण करनी पड़ेगी बेलडी थोड़ी ढक्के रखो ताते मान लिया पानी
1: पोलिया हाउस बनाओ पका ना पोलिया हाउस नवाचार करके पोलिया हाउस बनाओ अब जिया मान लियो खेत का मान बारे की है तो खेत में पाई हिसाब से बावा जिया मान लियो खेतों कोई कुंचा है या कोई आपने कटबी का टोका है बन अगर भी हिसाब से बावा अठे के आप बेल बाधी तो माने यहाँ मान लियो लू से कुंजा ढक देवा बन इतने दिन ढको का जिया मान लियो बह थोड़ी सी होशियार नहीं हुआ थोड़ा नाल चालन लाग जाना है भी कमाने पर इतनी कौन करे तो वो एक नवाचार के रूप में जिया मान लियो कोई जैविक तरीके से कर रही है कोई यहाँ कहते भी मत जैविक तरीके से सब्जी बारे क्यों तो भी की यहाँ मान लियो पहली पौध भी कहे क्योंकि आजकल ऐसा यहाँ देखा है कि भाई ताजा चीज ले आए कई खेत का मायने अब जिया मान लियो अपने क्षेत्र में कट्टे कट्टे दिए भी हो गया ओला गया देखो अनार भी वाव है वह भी भोजोर का वह
0: बिल्कुल
1: और ए अपने जिया मान लियो
0: अपने अनार बील आंवला
1: सगड़ा लागे
0: है ना। अब जमीन ने थोड़ी सी तैयार करनी अभी 10 पेड़ लगा लिया 10 पेड़ लगा दिया एक साइड की एक आमदनी शुरू होगी है। अब जहाँ डिश की फांट मार गए आगे जहाँ होली टिपते हैं डिश की फांट मारी और डिश की फांट के मां नीचे बेल लगा के ड्रिप सिस्टम लगा दियो और ऊपर भी डिश की फांट में जो खाई सी हो जाए ना ऊपर भी मां खेपड़ा खापड़ा घेर दियो है ना। तो भी तापमान नियंत्रित रहसी छयासी रहसी और कोई जानवर वगैरह वो भी बेल ने नुकसान कौन
1: पहुंचा।
0: और भाई छोटे छोटे देखो थाली मान मान बेल है बागे टिंड शुरू हो जाए कातर शुरू हो जाए
1: शुरू हो जाए
0: है ना। तो इन तरीके की जगह पैदा है ना बा बहुत ज्यादा हुआ है और बेरो कौन पड़े इतनी ज्यादा लागत वाली बात कौन रहे। आज कोई भी आदमी जो सब्जी लाने निकले तो 100-150 रुपया बिना सब्जी को नहीं आवे है ना
1: को नहीं आवे।
0: तो बात खेत की शुद्ध सब्जी जब आप बेचनी शुरू करा तो आपने घर ही ले जा लोग
1: घर ले जा
0: कभी अट्ठे मिलसी लोहियो मिलसी टिंडसी मिलसी काचर मिलसी काकड़ियों मिलसी तरियो मिलसी है ना। तो ऐन की चीजें है ना जिकी आपने इन तरीकों करनी चीज है। फिर दूसरी बात पशुपालन की ले लिया तो इन योजना के मार्फत उन्नत क्वालिटी का नस्ल का पशु है वह भी पाल सका आप मत्स्य पालन करो मुर्गी पालन करो है ना। और खास तौर जो मत्स्य पालन आपने जहाँ झिंगा का फार्म है अब देखो महंगो सौदो तो है वो क्योंकि हम खर्चा बहुत है ना। तो इन तरीके से अगर अगर आप लापरवाही नहीं करके करा तो वो भी फायदेमंद
1: है। और ये देखो कि मान लो कोई किसान या करे कभी आपा बागवानी करा तो भी कमाने देखो के हर प्रकार का जी हमारे फूल की करे खेती हाँ? तो कमाने देखो आमदनी बहुत जोर की है।
0: अब देखो आपने ले लो तो आपने जिले का मान ले लो फूल है जो सारो बारह आवे अजमेर पुष्कर जयपुर अठों आवे फूल। अब आपने थोड़ी थोड़ी जगह पड़ी है गेंदे का फूल लगा दिया और भी कई क्वालिटी का फूल
1: लगा दिया
0: तो फूल तो 70-80 रुपया किलो तो यही बिका है
1: यही बिका
0: है और दिन के बाद और ज्यादा हुए
1: आगे मैंने आइए और देखो कि जिया मान लियो कभी बिका तो भी आप बारे क्या तो आपने खेत में ही अगर आप तोड़ के तो ले जाए तो भट्ठे ही आगे ले जैसी
0: बिल्कुल ले जैसी
1: क्योंकि हर प्रकार को आप जहाँ कृषि कमाए कोई भी लाभ आई बढ़ावा तो नया नया तरीका अपनावांगा ने जदि भी होगा कई आप एक पर नहीं निर्धारित रहे की तो अलग अलग तरीका अपना अलग अलग समूह बना के कई बार आप कहा ना कभी योजना का मान के योजना में के लाभ वो लाभ है जी मान लो कोई मशीन नहीं करना आगे कोई नई चीज आगे तो बिको भी आप देखो कई मान अनुदान के आधार पर भी ने ले सका।
0: तो अर्जुन भैया आप बात रही तो आगे और भी करांगा एक लोक रचना सुना दिया मोहन राम चौधरी की गायडी
1: सुनाओ सा
0: सुनाओ सा

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो अभी संदेश में पहले आप लोक रचना सुनी मोहन राम चौधरी गायडो यू भजन हो। तो अर्जुन भैया अब आप बात करेंगे थोड़ी पशु दिन की भी कर लिया के संतुलित पशु आहार वो पशु के लिए क्यों जरूरी है भाई। जरूरी तो ही है कि आप घर में कदे सब्जी क्यांकी बनावा कदे कड्डी बना लिया कदे रायतो बना लिया कदे खिचड़ी बना लिया तो भाई बात पशु सागे होनी चाहिए
3: था।
2: ने? अब पशु ना आप एक एक चीज गालांगे छानी गाल दी तूड़ी गाल दी या बिन खड़बे के गिर दी सदाई सदा भी गालिया रखा संतुलित कठोर वो तो एकलित हो गयो
3: एकलित हो गयो वो तो एक मन देखो के जी आप पशुधन रखा तो आप सब पहले संतुलित ओ रखा के बिगो चुको चारो ना अपनो बिन मिश्रित करा के जी मान लो के अपने खेत में कड़बी वेड़ी है जी मान लो सिंचाई को साधन है तो अपने गेहूं की तोड़ी वेड़ी है देखो पालो हो लूंग हो या फड़ूसी हो चारो हो जो भी आपने सुविधा है की परत जमा लो एक नहीं यहाँ परत जमा की तीन चार परत होगी तो वो तो आया जो आके आप पशु ने गला ने तो वो थोड़ा थोड़ा सगड़ो आ जा तो वो मिश्रण हो जाए चारो
2: बिल्कुल
3: एक मान पशु देखो के चाव से खावे आ कुजरी को आप कई बार आप खड़ भी मिलायो आ तोड़ दिया बा नहीं तब जी मान लियो कई बार आप देखा के भी आपनो बैडो पशु है अब नयो पशु नहीं हो जाता नहीं आप यहाँ देखा कभी इन आप बाजरे को आटो दिया और क्या को आटा दे बी हिसाब से चाल जब आपने वो नहीं हो जाते यहाँ देखा भी अब आपने जो को आटो दे शुरू कर दिया तो बी के हिसाब से धीरे धीरे चालना चाहिए यहाँ नहीं कभी बिड़ता ही आप यहाँ करीब रहे कदे कह बाजरे दे दियो जो ही दे दियो और सगड़ो दे यहाँ नहीं हर प्रकार
2: तो सोराई की बात होगी ना।
3: हाँ।
2: देखो रनेड़ो नाज की ओट को वो चाहे आदमी खाओ चाहे
3: पशु खाओ
2: है रनेड़ो नाज हो है ना बिको एक तो वो बरकत ज्यादा करे और एक बी की गुणवत्ता है ना बहुत तकड़ी हो
3: है।
2: बीगा असली जगह पोषक तत्व तो है ना बीगा मां मौजूद हो
3: है।
2: अब अपा की एक सोराई होगी कि रंध कुणे कुण आलो जो चाहोगो कुण करेगो जब के बोरी मो सीधी ले आके खड़े या पशु आहार सीधो बेहनाला बर्तन में गाल दें हाथ रड़का की देखे को क्योंकि खड़ांग मायने रंग सगड़ांग मायने किला पाती सो क्यों आवे मशीना वो टूट टूट गए तो वैसे पशु के सागे चले जाए क्योंकि पशु खांती ते मैंने दबा दबखा क्योंकि वो बाद में किए के
3: उगाड़े
2: तो भी वक्त में किए के पशु के पेट के अंदर किलो पाती है जो कई अन्य चीज चली जाए जी आगे नुकसान करें छेद ना करें। पशु आहार अपन ज्यादा कोशिश तो आ करनी चाहिए कि भाई आप ग्वार गेहूं जो दलियो जो भी है बिन रान के दिया रान के नहीं दिया तो फिर मिक्स के मायने करा
3: मिक्स में करा
2: के भाई खड़ होगी थोड़ी सी थोड़ा सो गेहूं को चोकर हो गयो थोड़ा सो को और छाण छुण हो गयो है जो को दलियो हो गयो बाजरी को आटो हो गयो क्यों गुड़ की डली होगी दो मुठ्ठी लूण हो गयो है और मायने की है के कली को पानी के दिया गिलास योग तो भी कैल्शियम की पूर्ति हो जाए और इन तरीकों की है के पशु को मिलाएडो जो एकदम पशु आ रो गयो ने तो आतन के बेड़ो सुबह दे और सुबह बेड़ो आतन के देव उन न्याला के मां श्याला के मायने की है के थोड़ो पानी निवायो मिला दे जब मां के भी थोड़ो निवास बने रहे और उन न्याला के मायने जहा 10 घंटा पहले बेड़ो है तासीर ठंडी रहे ओ देनो चाहिए पशु ने ओ है संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार में थोड़ा बहुत बदलाव करते रहने चाहिए आप अपने खान पान में करा
3: आप मौसम के हिसाब से खान पान
2: बिल्कुल बिल्कुल
3: मौसम हाँ। के हिसाब से खान पान भी को परिवर्तन करें ना
2: परिवर्तन करें
3: तो भी को मौसम के हिसाब से परिवर्तन करें तो पशु एकदम स्वस्थ रहे निरोग रहे तो एक हिसाब से अगर कोई भी आप पशुधन रखा तो भी मान लिया मान लो धीरे धीरे कोई परिवर्तन करा ना तो भी के हिसाब से वो पशुधन बढ़िया तैयार हो
2: बिल्कुल संतुलित पशु आ रहे ना जगह के पशु की पशु को जीसोर हो रहा है और जीसोर हो रहे सी ने बिंगे फिर दूध धार ज्यादा बने सी बच्चा बिंगा बढ़िया हो सी है होशियार हो सी खुद पशु निरोग हो रहे सी तो बिम के रोगों लड़ने की क्षमता रहे सी तो अपने के काम तो आप कराए बिन थोड़ा सो तरतीबू करना है भाई निराचारित सगड़ा ही करे अब एक एक चीज घालना हो पशु में एक चीज की पूर्ति रहे वो करे बाकी चीजें कमी हो जाए। अब अर्जुन भैया के वक्त आज अठी तानी है और आप सगड़ा से सीख लेवा करा राम राम।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम किसान वाणी FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत में आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले सीमा मिश्रा और साथियों की गाई ये लोक रचना।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत FM 110.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं गुलदस्ता।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में गुलदस्ते में आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार के गाए इस गीत को। किशोर कुमार के साथ हैं आशा भोसले, फिल्म है दुनिया और संगीतकार है शंकर जयकिशन और शब्द लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अजनबी फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: व्यवसाय आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी के लिखे और आरडी वर्मन के द्वारा संगीतबद्ध किए हुए रामपुर का लक्ष्मण फिल्म के इस गीत को। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: या चुप रहूं
1: ना।
2: आपको सुनवा रहे हैं दीवार फिल्म के इस गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है शाहिर लुधियानवी की और संगीत है आर डी प्रमन का।

श्रोता, इसमें सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलदस्ता। आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है आरडी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ और आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध किया हुआ रॉकी फिल्म का ये गीत।

किशोर कुमार के गाए अनुरोध फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत में गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ प्रमा आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।

0: गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
1: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
0: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत

और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार थे विजय लक्ष्मी शर्मा और साथी। रात्रि के 9:30 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम कंट्री वाइड। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की। आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलो कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है।

दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है, हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है।

0: आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है? एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की,
0: जी जी।
1: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे? और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
0: जी जी,
1: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: न सिर्फ गरीबी से जो 25 करोड़

0: लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही, आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते, बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
1: जी,
0: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
0: मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा
1: जी।
0: 370 की बात इन्होंने की और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर भी घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: हर्ट्ज डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए अब सुनिए।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रोग्राम इनसाइट। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: एफएम 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गाए राम बलराम फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और साथियों की गाई कुछ गजलें।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो चुके हैं, इसी के साथ हमारी आज की ये दूसरी सभा ही संपन्न होती है। कल हमारी प्रथम सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

देखिए 11:10 हो चुके हैं, इसी के साथ हमारी आज की ये दूसरी सभा संपन्न होती है। कल हमारी प्रथम सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।